0: direkt ohin.
1: तो हम लोग यहाँ 2005 में हम लोग अपने हिसाब से मिल बैठकर जो हमारे खिस्ते परिवार पहले जो हैं उनको देखकर हम लोग उनका रहन सहन व्यवस्था देखकर उनका पढ़ाई लिखाई बच्चों का देखकर हम लोग सब मिलकर इस संस्था में इस कैथोलिक ईसाई धर्म में हम लोग आने का प्रयास किए हैं। शुरू में हम लोग को भड़काने लगे, आप यहाँ किसके खाने कहने पे ईसाई धर्म स्वीकार कर रहे हो, आप लोगों को नहीं बनना है और धमकी चमकी देने शुरू कर दिए, यहाँ ईसाई धर्म लोग नहीं रहना चाहिए, आप सिर्फ एल्बेस्टर लगाने का तैयारी था और वो चर्च को जिला प्रशासन जो SDM अनुविभागीय अधिकारी होता है उनके आदेशानुसार वो मेरे ऊपर से मुखाग्र आदेश किए, आप 3 दिन का समय दिए मेरे को कि आप वो गिरजाघर जो बनवा रहे हैं उसको गिरवा दो, नहीं तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी या जेल भेजा जाएगा। तो अभी हम लोग घर बनाना तो चाह रहे हैं, यदि आप लोगों की तरफ से सहयोग मिले या ना मिले लेकिन हम लोग घर बनाएंगे, बनाना ही है हम लोगों के लिए, बैठने के लिए एक निश्चित जगह जरूरी है। यही गिरजाघर बनने के बाद हमारे समाज एक जो हम लोग का एकता है वो और ज़्यादा मजबूती सुदृढ़ बनेगा, दूसरे आदमी भी देखकर हमारे साथ जुड़ने का संभावना रहेगा।
2: Threats, bribings, and the opposition to the presence of Christians
3: is on the rise.
2: Year after year, there are an increasing number of anti-Christian attacks, such as assaults on Christian schools and the burning and destruction of churches. Examples are rife. According to media reports, in the state of Haryana, militants disrupted a celebration at a Christian school and in front of a church toppled a statue of Jesus. In Uttar Pradesh, during a protest in front of the temples, they shouted, "Death to the missionaries." Masses have also been interrupted in Karnataka. The Hindu nationalist militant organization Bajrang Dal, an extremist organization that openly calls for aggression against non-Hindus, has been identified as responsible for many of these attacks. Increasingly, laws too are being used to reinforce the Hindu religion, such as anti-conversion legislation. Introduced to protect those who may be forced or financially lured into conversion, it is increasingly being used by hardline Hindu nationalists to prevent any conversion from Hinduism, where both the interested convert and the spiritual guide face financial and legal penalties. To know more, let's hear the witness of Christians in Trilokpuri, one of the many poorer districts surrounding the Indian capital of New Delhi.
4: Christine and Esther, Christian daughter and mother, live in Trilokpuri's characteristic homes, a home with just one room. They have endured pressure and rejection in their family due to their conversion.
5: My mom changed from Hindu to Christian, but we are born Christian.
6: This is a very good God. That's why I accepted Jesus Christ. Many insisted to try to stop us from converting.
4: In India, problems like Esther's are not limited to family and social pressure. Even if the constitution defends freedom of conscience, towards the end of the 1960s, 6 states passed freedom of religion laws. These laws try to avoid more conversions. Ever since BJP, the Nationalist Hindu Party, got into office, these laws have been toughened.

0: that Christianity brings a lot of change in education, in literacy, in economic fields, in social awareness. And this education is bringing a lot of change in the living standard of the local people. People are conscientized. People know the truth. And there is a big social awareness, social change that takes place. And it is clearly seen in this local area by the advent of Christianity. And people are aware of their legal rights, legal duties. They are strengthened. They have a say. They can stand up, raise their voice. Christianity brings all in the same platform. We don't have class system. All are one, whether wealthy or poor. But as far as a person is concerned, Christianity does not make any differentiation. No economic class, no any caste class. All are considered one. And this is naturally against the local established system.
1: Despite discrimination and sometimes outright persecution, the Catholic faith, with its call to the dignity and value of each individual, continues to attract faithful. This response is thanks to the sacrificial work of many priests, nuns, and lay catechists who serve under difficult circumstances in remote villages. The following testimonies give witness to their daily life in the rural areas of India.
2: My name is Sister Fulgencia. I'm working in this village for 2.5 years. यहाँ पे हम लोग छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं सुबह शाम और समय देख के घूमते हैं परिवार विजिट करते हैं फैमिली विजिट उसके बाद लोगों से मिलते जुलते हैं लोगों का परिस्थिति को समझते हैं लोग शेयरिंग करते हैं हम लोगों से
3: यहाँ तो मिशन नहीं है प्रार्थना मिसा पूजा नहीं होता है इसीलिए हम सब सिस्टर के साथ में बैठ करके हम प्रार्थना करते हैं
2: इनका तकलीफ यही है क्योंकि उतने क्रिश्चियन ये में नहीं पढ़ सकते हैं ना लोग कमाने का प्रॉब्लम है इसलिए चर्च में नहीं पढ़ सकते हैं लोग सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं ना इसलिए उन लोग को सरकारी में तो कैटेकिस्ट नहीं पढ़ाया जाता है ये लोग मजबूत होने से ये लोग का और मजबूत होगा इसे धर्म में
4: मेरा नाम लेओस तिर्की है मैं 15 साल का प्रचारक में हूँ कर रहा हूँ मैं प्रचारक इसीलिए बना कि मैं लोगों की सेवा कर सकूँ

नए प्रचारक का कार्य करने के लिए तीन जगह जाता हूँ। घाटोन, घाटोन का दूरी 5 किलोमीटर, इधर बसवार 15, इधर अरगोटी 8 किलोमीटर। मैं एक थैली पकड़ता हूँ तो जब गांव जाता हूँ तो ही बाइबल, रोजरी और भक्ति भजन, साथ में कपड़ा एक दो पकड़े रहता हूँ।

कहीं भी गांव जाता हूं तो लोग जहां जाता हूं वहां तो अभी तक मेरे नज़र में खुश ही दिखते हैं।